0: As you can see, a lot of people have gathered around the area where the building collapsed. It has become very crowded. Rescuers are trying to get people out of the debris. The rescue operation has intensified in the past hour. Many students are believed to be trapped inside, and people are rushing to the spot. Rescuers, bulldozers are all on the site to take out the students trapped.
1: बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद, इससे दुखद घटना नहीं हो सकती। हमारे जो बच्चे यहाँ पर अलग अलग जगह से पढ़ने आते हैं, जो यहाँ पर पीजी में रह रहे थे, एक बिल्डिंग वो कलेप्स कर गई है और एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है कि 10 बच्चे हैं, 20 हैं, 5 हैं, परंतु बच्चे उसके अंदर हैं, इसमें कहीं वो नहीं है। अभी 2 बच्चों को निकालकर एनडीटीआरएफ और एमसीडी और सभी पुलिस के डिपार्टमेंट हैं, उनको लेके गए हैं।

0: पांच हैं, परंतु बच्चे उसके अंदर हैं, इसमें कहीं वो नहीं है। अभी दो बच्चों को निकालकर एनटीटीआरएफ और एमसीडी और सभी पुलिस के डिपार्टमेंट है उनको लेके गए हैं।
1: हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी। और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और चार बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे, तो उनके चांस मुश्किल है, बट उनकी सांसें चल रही हैं। और अभी भी इस मलबे के अंदर से आवाज आ रही है बच्चों की, बचाओ बचाओ।
2: एम्बुलेंस आ रही है जा रही है वो कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, बट अप्रोक्स अभी भी वहाँ 10 से 15 बच्चे है। हाँ,
3: और काफी मलबा ज्यादा है तो निकाल,
2: बहुत मलबा है, एंड एम्बुलेंस बहुत लेट आई है, बहुत लेट, 1:30 बजे से पहले हुआ है एम्बुलेंस, अप्रोक्स 45 मिनट कॉल करके परेशान थे, कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा था एम्बुलेंस के लिए, ना पुलिस आई थी ना एम्बुलेंस आई थी, ये सब आधे घंटे के बाद आए और तब तक सब बच्चे दबे हुए थे वहाँ पर।
4: ये हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है। हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येल्लो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है, तो इन दोनों में भी पीजीज ही है, और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है, और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है।
5: Right, we also have, we'll get you all the details on that. These visuals that you see on your screens are live visuals from Kyiv in Ukraine, where U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner have arrived in Kyiv. And this comes after their talks with Russian President Putin in Moscow. U.S. envoy Steve Witkoff and Jared Kushner arrived in Kyiv, and this is their first official visit to Ukraine. Continued push for peace after Russia's full-scale invasion of Ukraine. Now, these are live visuals coming in from Kyiv right now. Now, this is a new phase in U.S. efforts to broker peace. A day after Kushner and Witkoff had traveled to Moscow for talks with Russian President Vladimir Putin. Now, that talk had lasted for more than 3 hours, and Kyiv has so far rejected Russia's maximalist demand, that they call it, that Ukraine had withdraw from the parts of eastern Donetsk and Luhansk regions that remain under Ukrainian control. Now, Washington's push to end the fighting had also lost momentum as U.S.'s attention had been focused for the past 6 months on the Iran war. Now, these are the visuals coming in from Kyiv. This is the Ukraine's president, Zelensky. Now, while their visit to Russia had happened moments ago, of course, Russia had told the U.S. envoys that Moscow is confident of achieving its military goals of seizing the rest of eastern Ukraine, and Ukraine has been pretty adamant about not giving parts of the territory. Now, Washington had revived efforts to end the war. And U.S. envoys did meet President Vladimir Putin in Kremlin, and now they have arrived in Kyiv for talks. These are the visuals coming in of Jared Kushner and Steve Witkoff, as you see on the screens, handshake. And, of course, the talks beginning in effort to progress with the peace talks. The White House have said they discussed substantive plans for the next steps for ending the war. Now, these steps would be announced in coming weeks, of course. Moscow had called the talks extremely frank. They said that the Americans had put forward a number of ideas and possible routes to a settlement, but they have not elaborated. So we'll have to wait and see what comes out for them from that meeting. And now this meeting that is supposed to take place between the U.S. envoys and Ukrainian leader Zelensky. In other news, new research shows that earlier this year, a group of automated AI programs went rogue and took control of a German website, and they turned it into a message board where other AI programs could chat with one another. And this follows a similar event in July when AI programs hacked into open source repository Hugging Face. These incidents highlight a growing concern in the tech industry.

0: Our last Sunday afternoon turned into a day of unforgettable trauma for dozens of students residing in a paying guest accommodation in the heart of Delhi. An old building collapsed in South Delhi's student hub of Satyaniketan, leaving at least three people dead and many others severely injured. Now, this building is a typical PG accommodation in Satyaniketan neighbor, which is next to several colleges of Delhi University's South Campus. At around 1:30 p.m. local time today, while many of the students were having their lunch, this old building named collapsed. Authorities claim the response was swiftly immediately dispatched to the site, but eyewitness claims they say otherwise.
1: एम्बुलेंस आ रही है जा रही है वो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि ज्यादा भीड़ है बट अप्रोक्स अभी भी वहाँ 10 से 15 बच्चे हैं
2: हाँ और काफी क्योंकि मलबा ज्यादा है तो निकाल
1: बहुत मलबा है एंड एम्बुलेंस बहुत लेट आई है बहुत लेट
2: डेढ़ बजे की घटना एम्बुलेंस
1: ये 1:30 बजे से पहले हुआ है और एम्बुलेंस अप्रोक्स 45 मिनट्स के बाद आई है सब यहाँ कॉल कर करके परेशान थे कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा था एम्बुलेंस के लिए ना पुलिस आई थी ना एम्बुलेंस आई थी ये सब आधे घंटे के बाद आए और तब तक सब बच्चे दबे हुए थे वहाँ पर
0: Well, this has happened every time such a tragedy has struck. Trail of apathy emerged in this case as well.
3: First thing, तो 2021 में वहाँ पर बिल्डिंग गया था वहाँ पर उसके बाद भी कभी एमसीडी वाले कभी कुछ कुछ क्लेरिफिकेशन दिया नहीं कि कैसे टूटा वगैरह सात बंदे सात बट सेवन वर्कर्स डाइड एंड उसके बाद भी कुछ

0: Now shifting our focus to India, a relaxed Sunday afternoon turned into a day of unforgettable trauma for dozens of students residing in a paying guest accommodation in the heart of Delhi. An old building collapsed in South Delhi's student hub of Satyaniketan, leaving at least three people dead and many others severely injured. This building on your screens right now is a typical PG accommodation in the Satyaniketan neighborhood of Delhi, next to several colleges of Delhi University's South Campus. At around 1:30 p.m. today, while many of the students were having their lunch, this old building named Hostel Day suddenly collapsed, leaving at least 50 students trapped inside. Authorities claim the response was swift. Rescue teams were immediately dispatched to the site, but eyewitnesses claim otherwise.
1: Ambulance आ रही है, जा रही है, वो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है. अभी वहाँ 10 से 15 बच्चे हैं.
2: हाँ, और काफी क्योंकि मलबा ज्यादा है तो निकाले.
1: बहुत मलबा है एंड एम्बुलेंस बहुत लेट आई है, बहुत लेट.
2: डेढ़ बजे की घटना एम्बुलेंस को,
1: ये डेढ़ बजे से पहले एम्बुलेंस अप्रॉक्स 45 मिनट्स के बाद आई है. सब यहाँ कॉल कर करके परेशान थे, कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा था एम्बुलेंस के लिए. ना पुलिस आई थी ना एम्बुलेंस आई थी, ये सब आधे घंटे के बाद आए और तब तक सब बच्चे दबे हुए थे वहाँ पर.
0: एंड अ ट्रेल ऑफ एपथी हैज इमर्ज्ड इन दिस केस.
3: लोगे पर फर्स्ट थिंग तो 2021 में वहाँ पर बिल्डिंग गया था वहाँ पर. उसके बाद भी कभी एमसीडी वाले कभी कुछ क्लेरिफिकेशन दिया नहीं कि कैसे टूटा वगैरह. सात लाइक नॉट एवरी लॉट से लेबर बट सेवन वर्कर्स वे डाइड. एंड उसके बाद भी कुछ वो सब नहीं हुआ हम लोग के पास, लाइक कुछ वो सब नहीं आया ना. हम लोग ने केस भी किया था बहुत जगह भी, लाइक कि इतना सब प्रॉब्लम्स हो रहा है, पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे लोग यहाँ पर बिल्डिंग्स टूट रहा है, देन बिल्डिंग्स का कुछ स्ट्रक्चर्स अच्छा नहीं है. सो कुछ हम लोग को आज तक कुछ वो जस्टिफिकेशन नहीं मिला बाय द गवर्नमेंट और बाय द एमएलए.
0: Cops later said that this building is over 40 years old. It had been vacated last year, but rooms were rented out to students again 2-3 months ago. It even had commercial operations running out of the basement, the same basement where repairs were underway when the building collapsed. Political leaders rushed to the collapsed site, including Delhi's Chief Minister Rekha Gupta, local MP Bansuri Swaraj and other public representatives as well. Top leaders expressed grief and government constituted a probe panel. The Chief Minister later claimed that no one will be spared.
4: पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है. हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए. रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ.
0: हाउएवर एज इन द पास्ट द बर्निंग क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाट अबाउट Was the building constructed as per sanctioned plans? Did it have a license to run commercial operations once the building had been vacated? And were any inspections and follow-ups done by the concerned authorities? And who allowed owners to rent out rooms?

0: A relaxed Sunday afternoon turned into a day of unforgettable trauma for students residing in a paying guest accommodation in the heart of Delhi. An old building collapsed in South Delhi's student hub of Satyaniketan, leaving at least five people dead and many others severely injured. This building that you see on your screens right now is a typical PG accommodation in the Satyaniketan neighborhood, next to several colleges of Delhi University's South Campus. At around 1:30 p.m. local time today, while many of the students were having their lunch, this old building, named Hostel Days, suddenly collapsed, leaving at least 50 students trapped. Authorities claimed the response was swift. Rescue teams were immediately dispatched to the site. Eyewitnesses otherwise.
1: एम्बुलेंस आ रही है जा रही है वो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है बट अप्रोक्स अभी भी वहाँ 10 से 15 बच्चे हैं
2: हाँ और काफी क्योंकि मलबा ज्यादा है तो निकाले
1: बहुत मलबा है एंड एम्बुलेंस बहुत लेट आई है बहुत लेट ये 1:30 बजे से पहले हुआ है एम्बुलेंस अप्रोक्स 45 मिनट्स के बाद आई है सब यहाँ कॉल कर करके परेशान थे कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा था एम्बुलेंस के लिए ना पुलिस आई थी ना एम्बुलेंस आई थी ये सब आधे घंटे के बाद आए और तब तक सब बच्चे दबे हुए थे वहाँ पर
0: A trail of apathy has also emerged in this case.
3: First thing, तो 2021 में वहाँ पर बिल्डिंग गया था वहाँ पर उसके बाद भी कभी एमसीडी वाले कभी कुछ क्लेरिफिकेशन दिया नहीं कि कैसे टूटा वगैरह सात लाइक नॉट अ लॉट से लेबर बट सेवन वर्कर्स वे डाइड एंड उसके बाद भी कुछ वो सब नहीं हुआ हम लोग के पास लाइक कुछ वो सब नहीं आया ना हम लोग ने केस भी किया था बहुत जगह के भी लाइक कि इतना सब प्रॉब्लम्स हो रहा है पानी का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे लोग यहाँ पर बिल्डिंग्स टूट रहा है देन बिल्डिंग्स का कुछ स्ट्रक्चर अच्छा
0: पुलिस लीडर सेड दैट दिस बिल्डिंग इज ओवर 40 इयर्स ओल्ड इट हैड बीन रूम्स वर रेंटेड आउट टू स्टूडेंट्स वंस अगेन टू स्टूडेंट्स 3 months ago इट इवन हैड कमर्शियल ऑपरेशंस रनिंग आउट ऑफ द बेसमेंट द सेम बेसमेंट वेयर रिपेयर्स वर अंडरवे व्हेन द स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड While political leaders rushed to the collapse site, including Delhi Chief Minister Rekha Gupta, local MP Bansuri Swaraj, and other public representatives, top leaders have expressed grief and government constituted a probe panel. The police registered an FIR against building owner Anand Bansal. The CM later claimed that no one will be spared.
4: ये बिल्डिंग काम कर रही थी बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ
0: However, as in the past, the burning question remains, what about accountability? Was the building constructed as per sanctioned plans? Did it have a license to run commercial operations? Once the building had been vacated, were any inspections and follow-ups done by the concerned authorities? And who allowed owners to rent out the rooms again? Locals alleged that they had raised complaints about this building in the past, and these complaints were ignored.
5: ये एक हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज़ पीजी है प्रॉपर 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस उधर से एक पीछे साइड से दो साइड से एंट्रेंस है और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है
0: Well, for now, it is a clear case of collusion and apathy once again, claiming in lives. Five people are dead, as per latest reports. Many others are critical. The owners of the building have been

0: A relaxed Sunday afternoon turned into a day of unforgettable trauma for dozens of students residing in a paying guest accommodation in the heart of Delhi. An old building collapsed in South Delhi's student hub of Satyaniketan, leaving at least 5 people dead and many others severely injured. This building on your screens right now is a typical PG accommodation in the Satyaniketan neighborhood of Delhi, to several colleges of Delhi University's South Campus. At around 1:30 p.m. today, while many of the students were having their lunch, this old building named Hostel Day suddenly collapsed, leaving at least 50 students trapped inside. Authorities claim the response was swift. Rescue teams were immediately dispatched to the site, but eyewitnesses claim otherwise.
1: आ रही है जा रही है वो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है बट अप्रोक्स अभी भी वहाँ 10 से 15 बच्चे हैं
2: फंसे हुए हाँ और काफी क्योंकि मलबा ज्यादा है तो निकाले
1: बहुत मलबा है एंड एम्बुलेंस बहुत लेट आई है बहुत लेट
2: डेढ़ बजे की घटना एम्बुलेंस
1: ये 1:30 बजे से पहले हुआ है और एम्बुलेंस अप्रोक्स 45 मिनट्स के बाद आई है सब यहाँ कॉल कर करके परेशान थे कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा था एम्बुलेंस के लिए ना पुलिस आई थी ना एम्बुलेंस आई थी ये सब आधे घंटे के बाद आए और तब तक सब बच्चे दबे हुए थे वहाँ पर
0: And a trail of apathy has emerged in this case.
3: First thing, तो 2021 में वहाँ पर बिल्डिंग गया था वहाँ पर उसके बाद भी कभी MCD वाले कभी कुछ क्लेरिफिकेशन दिया नहीं कि कैसे टूटा वगैरह सात बंदे सात लाइक नॉट अबाउट से लेबर बट 7 वर्कर्स वे डाइड एंड उसके बाद भी कुछ वो सब नहीं हुआ हम लोग के पास लाइक कुछ वो सब नहीं आया ना हम लोग ने केस भी किया था बहुत जगह के भी लाइक कि इतना सब प्रॉब्लम्स हो रहा है पानी का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे लोग यहाँ पर बिल्डिंग्स टूट रहा है देन बिल्डिंग्स का कुछ स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है सो कुछ हम लोग को आज तक कुछ वो जस्टिफिकेशन नहीं मिला बाय द गवर्नमेंट और बाय द MLA
0: Cops later said that this building is over 40 years old. It had been vacated last year, but rooms were rented out to students once again to 3 months ago. It even had commercial operations running out of the basement, the same basement where repairs were underway when the building collapsed. Political leaders rushed to the collapsed site, including Delhi's Chief Minister Rekha Gupta, local MP Bansuri Swaraj and other public representatives as well. Top leaders expressed grief and government constituted a probe panel. The Chief Minister later claimed that no one will be spared.
4: पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी बच्चे इस पर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ
0: However, as in the past, the burning question remains, what about accountability? Was the building constructed as per sanctioned plans? Did it have a license to run commercial operations? Once the building had been vacated? And were any inspections and follow-ups done by the concerned authorities? And who allowed owners to rent out rooms again? Locals allege they had raised complaints about this building in the past as well, and these complaints were ignored.
5: ये हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज पीजी है प्रॉपर 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से दो साइड से एंट्रेंस है और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहां तक है ब्लॉक हो चुका है
0: फॉर नाउ इट इज अ क्लियर केस ऑफ कोल्यूजन एंड एपथी वंस अगेन claiming innocent lives. 3 people are dead as per latest reports. Many others are critical. The owners of the building have been booked but not yet arrested. This is the 3rd case of building collapse in Delhi in the last 5 months. Tragedy after tragedy, the same story keeps repeating. Justice is assured but rarely delivered. Moving on, 3 people have been confirmed dead after a multi-storied building of a boys' PG hostel in southwest Delhi collapsed, with around 40 to 50 people feared trapped under the rubble. Rescue efforts are underway at the site with teams from DDMA, NDRF, Delhi Fire Services, Delhi Police, MCD, CTS and Civil Defence involved in the operation on a war footing, according to Delhi's Chief Minister Rekha Gupta. The Delhi Police has stated that

0: many others severely injured. This building on your screens right now is a typical PG accommodation in the Satyaniketan neighborhood of Delhi, next to several colleges of Delhi University's South Campus. At around 1:30 p.m. today, while many of the students were having their lunch, this old building named Hostel Day suddenly collapsed, leaving at least 50 students trapped inside. Authorities claim the response was swift. Rescue teams were immediately dispatched to the site. But eyewitnesses claim otherwise.
1: आ रही है जा रही है वो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है बट अप्रोक्स अभी भी वहाँ 10 से 15 बच्चे हैं
2: फंसे हुए हैं
1: हाँ
2: और काफी क्योंकि मलबा ज्यादा है तो निकाल
1: बहुत मलबा है एंड एम्बुलेंस बहुत लेट आई है बहुत लेट
2: डेढ़ बजे की घटना एम्बुलेंस
1: ये 1:30 बजे से पहले हुआ है एम्बुलेंस अप्रोक्स 45 मिनट्स के बाद आई है सब यहाँ कॉल कर करके परेशान थे कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा था एम्बुलेंस के लिए ना पुलिस आई थी ना एम्बुलेंस आई थी ये सब आधे घंटे के बाद आए और तब तक सब बच्चे दबे हुए थे वहाँ पर
0: And a trail of apathy has emerged in this case.
3: First thing, 2021 में वहाँ पर building गया था वहाँ पर. उसके बाद भी कभी MCD वाले कभी कुछ clarification दिया नहीं कि कैसे टूटा वगैरह. सात like not a lot से labor but 7 workers were died. And उसके बाद भी कुछ वो सब नहीं हुआ हम लोग के पास like कुछ वो सब नहीं आया ना. हम लोग ने केस भी किया था बहुत जगह पे कि लाइक कि इतना सब प्रॉब्लम्स हो रहा है पानी का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे लोग यहाँ पर बिल्डिंग्स टूट रहा है देन बिल्डिंग्स का कुछ स्ट्रक्चर्स अच्छा नहीं है सो कुछ हम लोग को आज तक कुछ वो जस्टिफिकेशन नहीं मिला बाय द गवर्नमेंट और बाय द MLA
0: Cops said that this building is over 40 years old. It had been vacated last year, but rooms were rented out to students once again 2-3 months ago. It even had commercial operations running out of the basement, the same basement where repairs were underway when the building collapsed. Political leaders rushed to the collapsed site, including Delhi Gupta, local MP Bansuri Swaraj and other public representatives as well. Top leaders expressed grief and government constituted a probe panel. The chief minister later claimed that no one will be spared.
4: पीजी के नाते ये बिल्डिंग कर रही थी बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ
0: However, as in the past, the burning question remains, what about accountability? Was the building constructed as per sanctioned plans? Did it have a license to run commercial operations once the building had been vacated? And were any inspections and follow-ups done by the concerned authorities? And who allowed owners to rent out rooms again? Locals allege they had raised complaints about this building in the past as well, and these complaints were ignored.
5: ये हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी की गिरी है हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज पीजी है प्रॉपर 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से दो साइड से एंट्रेंस है और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहां तक है ब्लॉक हो चुका है
0: For now, it is a clear case of collusion and apathy once again, claiming innocent lives. 3 people are dead as per latest reports. Many others are critical. The owners of the building have been booked but not yet arrested. This is the 3rd case of building collapse in Delhi in the last 5 months. Tragedy after tragedy, the same story keeps repeating. Justice is assured but rarely delivered. 3 people have been confirmed dead after a multi-storied building of a boys' PG hostel in southwest Delhi collapsed, with around 40 to 50 people fear trapped under the rubble. Rescue efforts are underway at the site with teams from DDMA, NDRF, Delhi Fire Services, Delhi Police, MCD, CTS and Civil Defence involved in the operation on a war footing, according to Delhi's Chief Minister Rekha Gupta. The Delhi police has stated that this was a 40 to 50 year old building comprising a basement and 5 upper floors and it was used as a PG accommodation. Repair work was underway in the basement when the incident occurred. The police have also clarified that 8 people have been rescued so far and shifted to hospitals. Search and rescue operations are continuing. This is the 3rd building collapse in Delhi in less than 5 months in July this year.

0: University South Campus. At around 1:30 p.m. local time today, while many of the students were having their lunch, this old building, named Hostel Days, suddenly collapsed, leaving at least 50 students trapped. Authorities claimed the response was swift. Rescue teams were immediately dispatched to the site. Eyewitnesses claim otherwise.
1: एम्बुलेंस आ रही है जा रही है वो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है बट अप्रोक्स 10 से 15 बच्चे है
2: फंसे हुए हाँ और काफी क्योंकि मलबा ज्यादा है तो निकाल
1: बहुत मलबा है एंड एम्बुलेंस बहुत लेट आई है बहुत लेट
2: डेढ़ बजे की घटना एम्बुलेंस
1: ये 1:30 बजे से पहले हुआ है और एम्बुलेंस अप्रोक्स 45 मिनट्स के बाद आई है सब यहाँ कॉल कर करके परेशान थे कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा था एम्बुलेंस के लिए ना पुलिस आई थी ना एम्बुलेंस आई थी ये सब आधे घंटे के बाद आए और तब तक सब बच्चे दबे हुए थे वहाँ पर
0: A trail of apathy has also emerged in this case.
3: First thing, 2021 में वहाँ पर बिल्डिंग गया था वहाँ पर उसके बाद भी कभी एमसीडी वाले कभी कुछ क्लेरिफिकेशन दिया नहीं कि कैसे टूटा वगैरह सात बंदे सेवन वर्कर्स वे डाइड एंड उसके बाद भी कुछ वो सब नहीं हुआ हम लोग के पास लाइक कुछ वो सब नहीं आया ना हम लोग ने केस भी किया था बहुत जगह पे लाइक कि इतना सब प्रॉब्लम्स हो रहा है पानी का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे लोग यहाँ पर बिल्डिंग्स टूट रहा है देन बिल्डिंग्स का कुछ स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है सो कुछ हम लोग को आज तक कुछ वो जस्टिफिकेशन नहीं मिला बाय द गवर्नमेंट और बाय द एमएलए
0: पुलिस लेटर सेड दैट दिस बिल्डिंग इज ओवर 40 इयर्स ओल्ड इट हैड बीन वेकेटेड लास्ट ईयर बट रूम्स वर रेंटेड आउट टू स्टूडेंट्स वंस अगेन टू स्टूडेंट्स अगो इट इवन हैड कमर्शियल ऑपरेशंस रनिंग आउट ऑफ द बेसमेंट The same basement where repairs were underway when the structure collapsed. While political leaders rushed to the collapse site, including Delhi Chief Minister Rekha Gupta, local MP Bansuri Swaraj, and other probe panel, the police registered a FIR against Bill Munson. The CM later claimed that no one will be spared.
4: ये बिल्डिंग काम कर रही थी बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाए रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ
0: However, as in the past, the burning question remains, what about accountability? Was the building constructed as per sanctioned plans? Did it have a license to run commercial operations? Once the building had been vacated, were any inspections and follow-ups done by the concerned authorities? And who allowed owners to rent out the rooms again? Locals alleged that they had raised complaints about this building in the past, and these complaints were ignored.
5: नाम की बिल्डिंग है इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज पीजी है प्रॉपर 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से दो साइड से एंट्रेंस है और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहां तक है ब्लॉक हो चुका है
0: Well, for now, it is a clear case of collusion and apathy once again, claiming innocence. 5 people are dead, as per latest reports. Many others are critical. The owners of the building have been booked but not yet arrested. And this is the 3rd case of building collapse in Delhi in the last 5 months. Well, tragedy after tragedy, the same story keeps repeating. Justin, our correspondent Harmjot Kaur has sent us a report where she has been observing the whole incident.
6: If you're a Delhi University student or live in Delhi, then you would know what Satya Niketan means for the hundreds of students who come from all over the country to study in some of the most premier institutions. There are also coaching centers here that aspirants come and study in. And there are others who are living here paying exorbitantly high rents to live in small quarters on a sharing basis. But today, tragedy has unfolded. In Satya Niketan, a bustling market and residential area, which has seen students buried underneath a massive pile of rubble after a building collapsed. Now, this is what this entire area looks like. There's several lanes in all of Satya Niketan, wires hanging from one corner to the other. A massive population that lives here. Now, a lot of buildings in this area have for with respect to how much construction is allowed, how many floors they can build.

0: Relax and the afternoon turned into a day of unforgettable trauma for dozens of students residing in a paying guest accommodation in the heart of Delhi. An old building collapsed in South Delhi's student hub of Satyaniketan, leaving at least five people dead and many others severely injured. This building that you see on your screens right now is a typical PG accommodation in the Satyaniketan neighborhood, next to several colleges of Delhi University's South Campus. At around 1:30 p.m. local time today, while many of the students were having their lunch, this old building, named Hostel Days, suddenly collapsed, leaving at least 50 students trapped. Authorities claim the response was swift. Rescue teams were immediately dispatched to the site. Eyewitnesses claim otherwise.
1: एम्बुलेंस आ रही है जा रही है वो कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है बट अप्रॉक्स अभी भी वहाँ 10 से 15 बच्चे हैं
2: हाँ और काफी क्योंकि मलबा ज्यादा है तो निकाल
1: बहुत मलबा है एंड एम्बुलेंस बहुत लेट आई है बहुत लेट
2: डेढ़ बजे की घटना एम्बुलेंस
1: ये 1:30 बजे से पहले हुआ है और एम्बुलेंस अप्रॉक्स 45 मिनट्स के बाद आई है सब यहाँ कॉल कर करके परेशान थे कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा था एम्बुलेंस के लिए

0: A relaxed Sunday afternoon turned into a day of unforgettable trauma for dozens of students residing in a paying guest accommodation in the heart of Delhi. An old building collapsed in South Delhi's student hub of Satyaniketan, leaving at least five people dead and many others severely injured. This building on your screens right now is a typical PG accommodation in the Satyaniketan neighborhood of Delhi, next to several colleges of Delhi University's South Campus. At around 1:30 p.m. today, while many of the students were having their lunch, this old building named Hostel Day suddenly collapsed, leaving at least 50 students trapped inside. Authorities claim the response was swift. Rescue teams were immediately dispatched to the site. But eyewitnesses claim otherwise.
1: अप्रॉक्स अभी वहाँ 10 से 15 बच्चे हैं।
2: फंसे हुए हैं।
1: हाँ।
2: और काफी क्योंकि मलबा ज्यादा है तो निकाल
1: बहुत मलबा है एंड एम्बुलेंस बहुत लेट आई है बहुत लेट
2: डेढ़ बजे की घटना एम्बुलेंस
1: का ये डेढ़ बजे से पहले हुआ है और एम्बुलेंस अप्रॉक्स 45 मिनट्स के बाद आई है सब यहाँ कॉल कर करके परेशान थे कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा था एम्बुलेंस के लिए ना पुलिस आई थी ना एम्बुलेंस आई थी ये सब आधे घंटे के बाद आए और तब तक सब बच्चे दबे हुए थे वहाँ पर
0: एंड अ ट्रेल ऑफ एपथी हैज इमर्ज्ड इन दिस केस
3: लोगों पर फर्स्ट थिंग तो 2021 में वहाँ पर बिल्डिंग गिरा था वहाँ पर उसके बाद भी कभी एमसीडी वाले कभी कुछ क्लेरिफिकेशन दिया नहीं कि कैसे टूटा वगैरह सात लाइक नॉट एवल नॉट से लेबर बट सेवन वर्कर्स वे डाइड एंड उसके बाद भी कुछ वो सब नहीं हुआ हम लोग के पास लाइक कुछ वो सब नहीं आया ना हम लोग ने केस भी किया था बहुत जगह के भी लाइक कि इतना सब प्रॉब्लम्स हो रहा है पानी का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे लोग यहाँ पर बिल्डिंग्स टूट रहा है देन बिल्डिंग्स का कुछ स्ट्रक्चर्स अच्छा नहीं है सो कुछ हम लोग को आज तक कुछ वो जस्टिफिकेशन नहीं मिला बाय द गवर्नमेंट और बाय द एमएलए
0: Cops later said that this building is over 40 years old. It had been vacated last year, but rooms were rented out to students once again 2-3 months ago. It even had commercial operations running out of the basement, the same basement where repairs were underway when the building collapsed.

0: Relaxed Sunday afternoon turned into a day of unforgettable trauma for dozens of students residing in a paying guest accommodation in the heart of Delhi. An old building collapsed in South Delhi's student hub of Satyaniketan, leaving at least five people dead and many others severely injured. This building that you see on your screens right now is a typical PG accommodation in the Satyaniketan neighborhood, next to several colleges of Delhi University's South Campus. At around 1:30 p.m. local time today, while many of the students were having their lunch, this old building, named Hostel Days, suddenly collapsed, leaving at least 50 students trapped. Authorities claimed the response was swift. Rescue teams were immediately dispatched to the site. Eyewitnesses claim otherwise.
1: एम्बुलेंस आ रही है जा रही है वो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है बट अप्रोक्स अभी वहाँ 10 से 15 बच्चे हैं
2: हाँ और काफी क्योंकि मलबा ज्यादा है तो निकालना
1: बहुत मलबा है एंड एम्बुलेंस बहुत लेट आई है बहुत लेट ये 1:30 बजे से पहले हुआ है एम्बुलेंस अप्रोक्स 45 मिनट्स के बाद आई है सब यहाँ कॉल कर करके परेशान थे कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा था एम्बुलेंस के लिए ना पुलिस आई थी ना एम्बुलेंस आई थी ये सब आधे घंटे के बाद आए और तब तक सब बच्चे दबे हुए थे वहाँ पर
0: A trail of apathy has also emerged in this case.
3: First thing, तो 2021 में वहाँ पर बिल्डिंग गिरा था वहाँ पर उसके बाद भी कभी MCD वाले कभी कुछ क्लेरिफिकेशन दिया नहीं कि कैसे टूटा वगैरह सात लाइक नॉट एबल से लेबर बट सेवन वर्कर्स डाइड एंड उसके बाद भी कुछ

0: A relaxed Sunday afternoon turned into a day of unforgettable trauma for dozens of students residing in a paying guest accommodation in the heart of Delhi. An old building collapsed in South Delhi's student hub of Satyaniketan, leaving at least five people dead and many others severely injured. This building that you see on your screens right now is a typical PG accommodation in the Satyaniketan neighborhood, next to several colleges of Delhi University's South Campus. At around 1:30 p.m. local time today, while many of the students were having their lunch, this old building, named Hostel Days, suddenly collapsed, leaving at least 50 students trapped. Authorities claimed the response was swift. Rescue teams were immediately dispatched to the site. Eyewitnesses claim otherwise.
1: एम्बुलेंस आ रही है जा रही है वो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है बट अप्रोक्स अभी भी वहाँ 10 से 15 बच्चे हैं
2: हाँ और काफी मलबा ज्यादा है तो निकाले
1: बहुत मलबा है एंड एम्बुलेंस बहुत लेट आई है बहुत लेट
2: डेढ़ बजे की घटना एम्बुलेंस
1: को ये 1:30 बजे से पहले हुआ है और एम्बुलेंस अप्रोक्स 45 मिनट्स के बाद आई है सब यहाँ कॉल कर करके परेशान थे कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा था एम्बुलेंस के लिए ना पुलिस आई थी ना एम्बुलेंस आई थी ये सब आधे घंटे के बाद आए और तब तक सब बच्चे दबे हुए थे वहाँ पर
0: A trail of apathy has also emerged in this case.
3: First thing to 2021 mein wahan pe building gaya tha wahan par uske baad bhi kabhi MCD wale kabhi kuch clarification diya nahi ki kaise toota wagera saat like not a lot of labor but 7 workers were died and uske baad bhi kuch wo sab nahi hua hum log ke paas like kuch wo sab nahi aaya na हम लोग ने केस भी किया था बहुत जगह पे कि लाइक कि इतना सब प्रॉब्लम्स हो रहा है पानी का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे लोग यहाँ पर बिल्डिंग्स टूट रहा है देन बिल्डिंग्स का कुछ स्ट्रक्चर्स अच्छा नहीं है सो कुछ हम लोग को आज तक कुछ वो जस्टिफिकेशन नहीं मिला बाय द गवर्नमेंट और बाय द MLA
0: पुलिस लीडर सेड दैट दिस बिल्डिंग इज ओवर 40 इयर्स ओल्ड इट हैड बीन वेकेटेड लास्ट ईयर बट रूम्स वर रेंटेड आउट टू स्टूडेंट्स वंस अगेन टू स्टूडेंट्स